0: 会，嗯，得怎么那送？懂得西洽会，门那儿。
1: 哦对对对，那是用起来。
0: 热，怎么就是用个起送的？
1: 哦对对对，他这边湖南人呢，就连对啥个啥吃的，他怎么人家管不得过个？
0: 门屋子是用个个新东个木，啥家客人人家怎么人家得过？
1: 哦对对对，但你这一段呢，因为。忙起哇！啊，可见人都啥可得个呢？那这个来那出个是中心的个，要开始这人个得工作没得有个？
0: 是，要那
1: 个。这个千里从那这个卡托啊，这个冰的盐巴这个这种会煮的，这个我煮会煮那个盘巴全部那么，所以这个总统个。
0: 我们现在都是从那些啥个，他那个人个北京那在没很多鸟个，是啥个个？是人个北京那就蛮北京市的，弄的怎么在些那出个？他宣传那个些啥个？人家那个总统那出个在啥家开那个去？代理商都呼啸上涌了，咱们的那么的那个送来的，
1: 我海口
0: 香港
1: 那么你的这个人个团结的人家团结送的啊三年个样这个插葱的那出个那么个那个你感觉是什么那个感觉是那个这个你怎么的变得是从那个你挖团的
0: 团的
1: 哦，
0: 香港的姜妈送了吃饭去了，东安人不是他。
1: 哦，对对，
0: 嗯，
1: 对对对，大龙今天呢，这种的是干起个么？是说送点东西，这种的，对呢，干将就急忙去送呢，啊，他央视现在就差不送个么难的去么咋子呢？人家别的是说的有得个么？现在个我这个买别的东西呢，这个十几个家口上班的，咋突然的你那有得那里？
0: 卡真当然有头的嘛，我从哪能当个兄弟兄个阿里巴巴国际站上个去从工地担当么？就是担当的是呢，他得了个呢，就搞这怎么个？
1: 就搞这个怎么个？
0: 这得了个呢，流量了的怎么个我们都帮助么？他得了个呢，我去录取了录取，从工地当的。他得这个呢，从工地这个在在法国人呐，去台湾人呐。连住安的怎么当个兄弟兄个我黑么？他得从工地担当呀。
1: 扎土中坑的那，可跟有过几个么？他扎土中坑那，现在坑洼里头，那年几个人没了去？阿拉这个土松那样的，古巴没坑。坎城带人进来，这个开里子这么那出货，小瓦坑塘坑子里呢，啊，云塘没那多的那，南站的等于，开里家就是用的，啊，开的北街通就那样修改起个么？啊，门个人进来，他乡镇啥坑的呢？那样就很难个个，简单当家几个。从那那这个热天个里家里头弄，你过冬从那这个穿穿的个里头弄个，那么个那这个闷冷穿冬去，怎么哎呦个？
0: 是个娘个，买个我买些去呢。
1: 嗯对。
0: 俺就俺就从头那打，想个买个么？那是让那些杂志子那了，是个价格。那经过你在那这是个价格也就，想个那是厂里那的经过来新的，想个想个那是咋不脱个么？
1: 我的。
0: 当然个啥个送那是开都没来个，还是没黑个，还是没黑那些去的。ले माखिन मारे तो अनछुम दे छगे पेगे लोजे रन दिस मा माखिन ता जले नन दन मारे
1: ओक साचानी आ ताति अमा सिखं तने गिरगिन छमु खपरते ना मंजूर गिन दे थो जों सें खं ग मना ग नने चिन छ ग अमंग जुरवान दे ना छि नदे पुने ना दे बुर कुन दे यंग खिनर मो दे यंग छ छ थोंजे ज क तंग दे तंग क त पेले तंग दे शर छों ए को ना आ द तंग देवा उनो ग छ जटन छमुज ग ले को ना रंग सा ने ने ता मना जा जु ज ग का ग मो ना तने ना का ख मा मा जु क दोंद छु ना छ ग सो रंग लोब जों ई रंग छ ग निवाला ते ने तं दे ने सै छो लोब छै ना छु सा ने ग मा छों दे लोब छै दे तं ग त ले ग को मो ते छ ग छों ना खुर छु को ना का ना छु ग जा थु छों खं ना छु ग जक तं जक वानी ना नी ग छों ग छ ग निवान छ ग जु ना छु ग खसो कं छ थ ने ना छ ग ले कन ले जुर का त छो रंग ग इस छ ग दे ना रे
0: जे
1: तुमरे नी ग ते छो रंग छ ग थोब जों ग मा जे ए थु ता
0: ता थो जों ता हि नाम ना ले गो ह ग ने मा खि ना ना छों ग ला
1: ता जो ता खुशी ब थु का
0: जे जे जे ता लो जों ग दे शांघाई न्यू ग दा मु शांघाई शेंजन的产大老总是那的从那开始起呢，啊，这同的从起开始活，你怎么俺人家种呢？俺人家老总一个马送呢，老百姓的心都啥样都买是。
1: 你呢？是从那年代开始呢，打破嘎嘎，你开了吃不等年代呢，得了人家呢，养起个年开养马子有卡，但你不得人家老总哎，哪个这个道理有个么？忙吧呢，我这才去了个，那种的马。